सुबह मांगोर साथ ने वो लोगों ने कैफेटेरिया तो भाई कौन सा लिसना कैफेटेरिया ने कहा है अरे लोगों ने वो कैफे नहीं